अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: भाइयों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: नहीं बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो मोना, सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस, यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दाना कहना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बिल्ली चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे। आ पंजरों का

उनकी लाइफ, ड्रंकर्ड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े।

शोहर पी के आया दरवाजे पे फिर चिल्लाया आ ई ऊ नी। उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

माला देवी, माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: ओ गारे गारे
1: ये हम को बटका
0: गारे
1: दिया।
0: गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
2: एक चतुर नार हम छोड़ गए जी एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पे रहे ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: घर तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: जा जा

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं जो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

Yeah.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन आ चुका हूं लेकर आज के 90s एंड न्यू स्पेशल के 20 प्यारे शो में। और एक रिक्वेस्ट मैंने आप सभी से किया था कि आज प्रोग्राम को कुछ खास बनाने का इरादा था, यानी कि सैड सॉन्ग हमेशा मैं इग्नोर करता हूँ ना। आप लोग सोचते हो कि हमेशा अमन सर जी तो सैड सॉन्ग को लास्ट में प्ले करते हैं, आज सैड सॉन्ग से स्टार्टिंग क्यों किया है। तो मैंने आरजे कंसर जी के शो में आप सबसे कहा था कि आप सभी आज यानी सैड सॉन्ग की फरमाइश करें, यानी कि वो बेवफाई वाले वो दर्द भरे गाने जो आपके वो पिछले दिनों को याद करें। तो बहुत से दोस्तों ने तो ऐसे ऐसे गाने जो यानी डेली सुनते हैं वही भेज दिए हैं, लेकिन बहुत से दोस्तों ने सैड भी गाने भेजे हैं। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सैड गाने ही प्ले करने वाला हूँ। आप भी अभी से भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए और आज के प्रोग्राम को सैड सैड सैड सैड बनाते हैं। इंजॉय द ट्रैक, मेरी पसंद के इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और अशोक देशमुख जी, वेलकम करते हैं आपका भी अशोक देशमुख जी। और आत्माराम पाटिल जी, आपका भी वेलकम है। और सर्वेश भगत जी, आपका भी वेलकम है। सर्वजीत सेठी जी, आपका भी वेलकम है। और हमारे राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजेश कुमार जी। विशाल अंकद जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं अंकद विशाल जी। और पीपू राय जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। साथ ही साथ दीपक कुमार गायकवाड़ जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और आरिफ सिंधी जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और एम ताहिर साहब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं जाकिर खान जी, आपका भी वालेकुम सलाम। और यहाँ पे प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है। जितेंद्र सिंह जी वेलकम है आपका भी। और गोविंदा खंडाते जी, आपका भी वेलकम है। और आज हमारे आरिफ सिंधी जी का जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ और इस गाने के साथ। और इस गाने की डिमांड हमारे कौन से दोस्त लेके आए हुए हैं, नाम बताता हूँ मैं आपको। और ये धनेश मिश्रा जी यानी दिल्ली से सुनना चाहते हैं, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, बिल्कुल निभाना होगा भाई।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे आमना खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अम्मन जी। वालेकुम अस्सलाम। और आज तो हैरान हो गए हैं कि ये सुनकर के आज आप सैड सॉन्ग का महफिल सजाने वाले हैं। जी क्या करें, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि चलिए आज कुछ अलग करते हैं, तो अलग करने के मूड में ये मैंने कुछ अलग कर दिया। वैसे मैं तो इसको ये मूडी चॉइस में लाना चाहता था, लेकिन फिर देखा जाएगा मूडी चॉइस की बात अभी एक महीना के समय है ना, आ जाएगा एक बार फिर से। फिलहाल अर्शद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अर्शद भाई, बहुत बहुत वेलकम है। और अर्शद जी के साथ साथ यहाँ पे गजानन सलोकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गजानन सलोकार जी आपका भी। और बागेश्वर निषाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बागेश्वर निषाद जी। और जितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं बहुत ही शानदार पसंद है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा, शानदार गीत सुनने को मिला है। आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: धनेश मिश्रा जी की डिमांड बहुत ही शानदार है, सुनवाने के लिए शुक्रिया। और अमन सर जी,
0: जी जी
1: आज आपने मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रेडियो हॉट स्टार पे चला के मुझे

0: सुनो भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: वेलकम।
0: और मेरा जन्मदिन की बधाई दी उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन सर जी, एक तरफ तो आप हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो और दूसरी तरफ सैड गाने सुना रहे हो, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अरे बंदा अपना बर्थडे मनाए या ये सैड सॉन्ग को एंजॉय करे। अरे सर जी, ये मैंने नहीं कहा, आप वैसे हर तरह के गाने की डिमांड आई हुई है, बस थोड़ा सा कुछ अलग करने का मैं सोच रहा था, और कोई बात नहीं है। उन यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और आपकी तबीयत कैसी है जरूर बताइएगा। और प्रीति रायदास जी जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सिवान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फिलहाल एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी, हॉट स्टार पर इस शो में जो व्यवसायिक है वो यानी जो दर्दमंद गाने हैं, वो गानों का ऐसा मरहम लेके आए हैं जो दिल टूटे के हर जख्म को अपनी रूहानी आवाज और एहसासों से सहला देगा। आपका ये शो आज सिर्फ नगमे नहीं सुनाएगा बल्कि मोहब्बत में मिले दर्द को भी अपनी मुकम्मल बाहों में समेट कर सुकून की मीठी छाव का एहसास दिलाएगा। जी बिल्कुल, वैसे अगला डिमांड आप ही का ही मैं प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि भाई गाना ही ऐसा है कि यानी प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने को बहाने आ जा। सुनवा रहा हूँ भाई, इंजॉय कीजिए इस गाने को। और जैसे कि हमेशा सभी को डेडिकेट करते हैं तो मैं सुनवा रहा हूँ आपके इस गाने को। सच में गाना बहुत ही प्यारा है ये भी, कि प्यार झूठा सही दुनिया को

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रवि मोहाड़े जी। और आत्माराम पाटिल जी क्या कहेंगे सुनेंगे, लेकिन जाकिर जी लिखते हैं कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और को मिलने के बहाने जा। गाना बहुत ही प्यारा लगा है और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन सर जी, जी जी गांधीनगर गुजरात के हमारे रेडियो साथी आर एस सिंधी, इनकी आज जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और उनका गीत भी बहुत मधुर सुनने को मिला सर, शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये प्रियंका जी क्या कहती हैं?
2: अमन जी गुड इवनिंग। अभी एक वो भैया ने जो बोला ना वो एकदम सही बोला हैगा कि बंदे का बर्थडे है और आप सैड सॉन्ग सुना रहे हैं, वो भी क्या सोचेंगे कि बर्थडे पे सैड सॉन्ग सुनना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोग्राम ही कोई ज़्यादा नहीं सुन पाएगा सैड सॉन्ग चलेंगे तो। अच्छा। ये मतलब हम बताना चाह रहे थे। अच्छा। बट आज ऐसा आपने क्या सोचा कि आपने ये सैड सॉन्ग की रखा है कि सैड सॉन्ग ही सुनना है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे सॉन्ग भी सुनने हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आप लोग के भी गाने प्ले होंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको जो सुनना है वो जरूर मैं सुनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी को यानी कि मेरी जानिब से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद हो, और मेरा गाना फिर प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा प्रोग्राम को सैड नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम से मिलने चल रहा हूँ। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गजानंद जी लिखते हैं कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके और ओके और यहाँ पे नंदलाल जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद जी आपने बताया नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है। गीता जी, गीता यानी शरण जी जुड़ चुके हैं समस्तीपुर बिहार से, सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं और लिखते हैं शानदार डिमांड है। और इंदु भूषण यानी त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड है राजेश कुमार जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना, हम अपनी मोहब्बत का इम्तकाम इम्तहान है।

0: वेलकम एक और रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं।
1: अमन जी, नॉर्मली जब हमारा जन्मदिन आता है तो हमारे दोस्तों को पता होता है, पर रेडियो हॉट स्टार के जरिए अगर हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है। और सब जिनका बर्थडे आ रहा है वो बहुत खुशनसीब हैं कि रेडियो हॉट स्टार पर उन्हें अपने बर्थडे जन्मदिन की शुभकामनाएँ मनाने का एक प्लेटफॉर्म मिला जो सभी को पता चल रहा है और सभी उनको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये आपका कार्यक्रम है। मैं दीपक गायकवाड़, सीढ़ीमाला, मध्य प्रदेश से।
0: थैंक यू सो मच आपका। और बहुत जल्दी अपडेट आएगा, यानी रेडियो हॉटस्टार का अपडेट जो आएगा उसमें अब जिनका बर्थडे होगा उनके लिए वो यानी कि फोटो भी रहेगा उनका उसके साथ, उसमें यानी गुब्बारे भी फूटेंगे, इमेज मतलब मजा आने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। फिलहाल एम टाइट साथ ही देंगे। अमन सर जी, आपके हाथों को चूमने का दिल कर रहा। अच्छा, ओ माय गॉड, क्योंकि जिन हाथों से मेरा गाना प्ले किया है और जिस मोहब्बत के साथ आपने सफक के साथ आपने अपनी आवाज़ के साथ गाना पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ थैंक यू सो मच आपके इतना यानी प्यार के लिए। और ये
2: जय मां सर जी, अजेश कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे अकबर खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन जी, मैं भी जुड़ गया हूँ। ओके, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कमाल लिखते हैं कि अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। ओके, बहुत मैं यही दुआ करूँगा कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आर्य सिंध जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है। और आर्य सिंध जी, क्या ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, जरा जरूर मुझे बताएंगे प्लीज। और ये सुनते हैं।
3: हेलो हेलो अमन जी, ये सैड सॉन्ग सुन के तो हंसी ही आने लगी। अच्छा। कि इतने दुखी सॉन्ग कौन सुनता है।
0: अरे, मैं सुन रहा हूं ना,
3: मतलब ऑफिस से आने के बाद तो ऐसा लगता है कि रेडियो हॉट स्टार सुन के मूड एकदम मस्त चकाचक हो जाए, बट ऐसे सॉन्ग सुन के तो एकदम ही मूड ऑफिस में भी मूड ऑफ और यहाँ पे ये सॉन्ग सुन के भी मूड ऑफ ही हो रहा है। बाकी हमें तो अब है ना इन सॉन्ग,
0: लेकिन आपने भी जो डिमांड किया है वो भी तो कौन सा आपने यानी खुशी वाला गाना भेज दिया है, आपने भी तो वही यानी सैड वाला ही गाना भेजा हुआ है। फिलहाल यानी कि गजानंद जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी की पसंद बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं भाई।
4: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में जुड़ के फीडबैक दे रहा हूँ। और अमन सर जी, आपने जो निर्णय लिया है शेयर सॉन्ग सुनवाने का, ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये निर्णय।
0: अच्छा।
4: तो अमन सर जी, पहले मेरा गाना कुछ और था लेकिन आपका निर्णय जैसे चेंज हुआ तो मैंने भी मेरा गाना चेंज करके आपको शेयर सॉन्ग भेजा है। अमन सर जी, बहुत दिनों के बाद रेडियो हॉटस्टार पर लगातार शेयर सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि शेयर सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। तो अमन सर जी, आपका मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है और गाने आज तो सभी बेहतरीन सुनने को मिलेंगे। हम तो आज का 10 बजे तक पूरे गाने सुनने का मजा लेंगे।
0: बिल्कुल, एक्चुअली देखिए, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, हर किसी की पसंद, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। प्रोग्राम करने का थोड़ा सा हमेशा एक तरह के गाने सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इस बार अलग किया जाए, थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए यार, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो बिल्कुल मैं बीच में चेंज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और पिकू राज जी लिखते हैं कि अमन सर जी सुपर वॉयस है आपका, ओह थैंक यू सो मच आपका भी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी गाना मुझे बहुत ही लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निशांत है, बोले लिखते हैं कि गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यानी कि प्रीति रायदा जी, आपका जो गाना है शायद यानी कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले सौतन की बेटी, शायद ये ओल्ड गाने में आएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक लग रहा है मुझे। हो सकता है तो आप अपना गाना कुछ चेंज कर सकती हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ओल्ड है। आज 90 स्पेशल गाना चल रहा है, 1990 से लेकर आज तक के कोई भी गाने भेज सकती हैं। जाकिर खान जी लिखते हैं कि मोहब्बत के कुछ अंदाज भी होते हैं, मोहब्बत के कुछ अंदाज भी होते हैं और आंखों के कुछ ख्वाब भी होते हैं, जरूरी ही नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आंखें में भी सैलाब होते हैं। जी बिल्कुल, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ये फीडबैक
5: आरजे अमन सर जी।
0: जी जी,
5: कभी कभी सैड सॉन्ग भी सुनना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
5: और प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच,
5: कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: ओके, धन्यवाद इसी बात पर। अगला गाना मैं आप ही का प्ले कर रहा हूँ इसी बात पर।
6: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से। आज के गाने के बोल रहेंगे, और दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। फिल्म का नाम है ईमानदार। आवाज़ें दी है सुरेश वाटकर जी। डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आदिति जी को, और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से। शुक्रिया,
0: एंजॉय कीजिए अपने इस डिमांड को।

0: बिल्कुल तेरा ही डर छुपा रखा है। वैसे फिर देख भी बहुत आ रखा है। पहला तो ये
1: अर्जे मंसर जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका। और फिलहाल चलो भाई पीछे चल जाओ जल्दी से, क्योंकि नेट बहुत स्लो काम कर रहा है। हाँ, और फूले बसंजो जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ। आज है मंगलवार और आज के अपनी थीम है स्टार 90s और स्टार न्यू। और इसमें सर आज सैड सॉन्ग चलने वाले हैं सर, तो आज का माहौल कुछ अलग होने वाला है सर। आपका जो निर्णय सर, लाजवाब और काबिले तारीफ। सच में आज मज़ा आने वाला है, और कोई 90s में जाएगा और कोई कॉलेज के ज़माने में जाएगा, क्योंकि सभी दोस्तों ने किसी ने तो प्यार किया होगा सर। अच्छा। जो उनकी याद में ये आज गीत सुनने वाले हैं। आज का कार्यक्रम भी अच्छा होने वाला है। हम भी अभी अभी जुड़े सर आपसे, राजेश कुमार जी की फरमाइश चल रही थी, और मज़ा आने वाला है सर। मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और ये फीडबैक।
3: नमस्ते, गुड इवनिंग, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए।
0: हाँ, तो आपने आपका जो गाना है वो प्लीज उसको लिख कर भेज दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। और यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गई हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाने चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि आरिफ सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनकी पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इतना बेहतरीन गाने के लिए। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि वाह क्या प्रोग्राम चल रहा है, मजा आ गया सुन के। और यानी पीकू राय जी लिखते हैं कि ये सैड सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है, मजा आ रहा है। और ये फीडबैक सुनते हैं।
4: अमन जी, ये सॉन्ग अच्छा था, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ।

0: आरिफ हिंदी जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, मेरी डिमांड का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और मेरे जन्मदिन की जो दोस्तों ने मुझे बधाई दी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और हमारे एम ताहिर साहब भी लिखते हैं कि लिखते हैं तेरी खामोशी से उतर कर जो रूह तक पहुंच जाए, लिखते हैं कि तेरी खामोशी से उतर कर जो रूह तक पहुंच जाए, हम वो दर्द मोहब्बत अपने अंदर छुपाए बैठे हैं, और तुम जिसे महज एक गुजरा हुआ ख्वाब समझते हो, हम उसी जख्म को अपनी कश्ते ही हयात बनाए बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूंगा गीता शरण जी का, ये सुनना चाहती हैं, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। बिल्कुल।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे राधा के सपोर्ट के लिए मैं भी जुड़ गया हूँ। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और पीपू राय लिखते हैं कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में सुपर सॉन्ग है और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: तेरा दर्पण, बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं, बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं। आपने कहा था ना कि गाना गाते गाते तबीयत ठीक हो जाएगी, तो तबीयत ठीक हो गई।
1: चलिए अच्छी बात है, आप अच्छा रहिए। और आदित्य सिंह जी लिखते हैं कि गीता जी के पसंद बहुत ही प्यारी डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया उनके इसके लिए। और गजन लिखते कि मैं दुनिया भुला दूंगा, आशिकी का बहुत ही शानदार गाना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नीतू जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है जी, बिल्कुल। और अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक है हमारे MD अरशद जी का, और अरशद जी के साथ एक साहब और भी मैंने नाम देखा था, बता रहा हूँ मैं,

यानी गुड्डू जी का, और दोनों का एक ही डिमांड है कि तुझे याद ना मेरी आए, और किसी से अब क्या कहना, एंजॉय कीजिए भाई गुड्डू जी और एमडीआर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे ओके और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन सर जी अपने गम और तन्हाई के इन इन यानी नगमों को जिस इन शिद्दत से पिरोया है उसने आज की महफिल को एक अलग ही रूहानी मुकाम दे दिया है। हर एक गाने के साथ दर्द इतनी खामोश और मूक आवाज में छन कर आ रही है कि सुनने वाला अपना ही दर्द भूलकर इस सुरमई शाम में बह जाने को मजबूर हो जाए। आपकी सोच को तहे दिल से सलाम है। थैंक यू सो मच सर जी। और फिलहाल यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि मेरे पसंद का गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन पिकुराज जी लिखते हैं कि ये तुझे याद में मेरी आए। किसी से अब क्या कहना, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना।

0: कहना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जाकर जी लिखते हैं कि क्या कहते हैं भाई, बुलजा सिम सिम। हाँ, ये लिखते हैं कि वो रात और दर्द और सितम की रात होगी, वो रात वो दर्द और सितम की रात होगी, जिस रात उसकी रुखसत बारात होगी, और उठ जाता हूँ मैं ये सोचकर नींद से अक्सर कि एक गैर की बाहों में मेरी कायनात होगी। ओ माय गॉड, क्या कह दिया आपने। और यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वाह सुपर नाइस सॉन्ग है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और अर्षा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अकबर खान जी लिखते हैं वाह क्या बात है अमन जी, आए तो सभी गाने एक से बढ़कर एक सुनने को मिल रहा है, सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया इतने लाजवाब दर्द भरे गाने की डिमांड करने के लिए, बहुत ही मजा आ रहा है एकदम, मैं तो क्या ही बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: बहुत लाजवाब और दिल को छू लेने वाली फरमाइश चल रही है हमारे मित्र MD अशरथ जी और इनके साथ गुड्डू जी दोनों की, आपने जो मिलजुली फरमाइश चलाई सर मज़ा आ गया। और इनके पहले आपने हमारी बहन गीता जी इनके फरमाई चलाई सर, तो उनका गीत भी हमें अच्छा लगा, थैंक यू सो मच रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, धन्यवाद।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, बहुत ही अच्छा ये लाजवाब गाना लगा है, मज़ा आ गया सुन के। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, बहुत ही लाजवाब चॉइस है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीकू राय लिखते हैं कि सैड सॉन्ग तो आज यानी पूरा टाइम सुनने पर यानी मिल रहा है, बहुत सुन के अच्छा लग रहा है। और मोहम्मद शकील जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फिलहाल अगला जो डिमांड है अच्छा जुड़ चुके हैं RJ यहाँ पे आवाज़ की मलका RJ रत्ना जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। RJ आदिति जी का अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए सब कुछ भुला दिया।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और ये चंद्र जी लिखते हैं कि ये जो गाना चल रहा है तो बहुत ही मजा जबरदस्त गाना था, मजा के सुन के। और यानी राहुल पाची जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया ये लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुझे याद न मेरी आई किसी से क्या कहना। राहुल क्या नाम है, यानी पीकू राय जी लिखते हैं कि ये कभी बंधन जुड़ा दिया गाना बहुत अच्छा लगा है, शुभ पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और बागेश्वर निशा लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आरती जी लिखते हैं कि आरती आदित्य जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी, सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और

0: है जिनको गुनगुनाना पड़ ही जाता है।
1: अच्छा जी, ओहो बहुत चलाक हुआ। और यहाँ पे दीपक कुमार जी लिखते कि अमन जी अमन जी गानों का मूड जब चेंज हो तो अच्छा जी। और यहाँ पे यदि फूल संजू भाव लिखते हैं कभी बंधन जुड़ जुड़ा लिया, ये डिमांड थी आर जे अदिति जी का। ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आर जे अदिति जी की पसंद बेहद ही लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और फीडबैक
2: अमन सर जी नमस्ते, कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। अमन सर जी क्या 90s एंड न्यू स्पेशल में क्या सैड सॉन्ग चलेंगे या दूसरे गीत भी चलेंगे बताइएगा
1: जी। दूसरे
2: क्या मैं गीत अपना चेंज कर सकता हूँ ये भी बताइएगा। तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: ओके, आप अपना गीत भी चेंज कर यानी कि मतलब जी अपना गीत भी चेंज कर सकते हैं है ना, लेकिन मुझे जो जो जहाँ फिर बैठेगा मैं वहाँ पे प्ले कर दूंगा। ओके, जो आपने पहले भेजा मैं उसको भी प्ले कर सकता हूँ जहाँ मौका मिलेगा, या अगर अगला को मतलब कोई और भी गाना भेजेगा मुझे अगर वो वहाँ पे कहीं फिट बैठेगा जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ प्ले कर दूंगा, चाहे तो भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राजेश कुमार लिखते हैं कि सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब गीत है, थैंक यू सो मच। और इंदु भूषण जी लिखते हैं कि ब्यूटिफुल सॉन्ग है। और संजय साहनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। ओके जी। और यहाँ पे जाकिर खान जी लिखते हैं कि रह ना पाओगे भुला कर देख लो, रह ना पाओगे भुला कर देख लो, यकीन आ जाए तो आजमा कर देख लो, हर जगह महसूस होगी मेरी कमी, अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो। जी बिल्कुल सही कहा। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हम तुम्हारे सनम का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूंगा शाहिद अंसारी जी के। शाहिद अंसारी जी इंजॉय कीजिए अपने ट्रेड

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना सच में बहुत ही प्यारा गाना था, दिल को छूने वाला, सुकून देने वाला है। थैंक यू सो मच शाहिद अंसारी जी, और आप बनते हैं आज के सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक गाना और सुन सकते हैं फीडबैक।
1: अरजे अमर सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे आरजे रत्ना जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और पीकू राय जी लिखते हैं कि भाई शाहिद जी ने तो भाई कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा गाना सुनवा दिया, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए उनको। और हमारे राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी ओके कोशिश करूंगा।

0: सॉन्ग में मस्त हो जाते हैं,
1: जी
0: गुनगुनाने लग
1: तो
0: जाते हैं।
1: फिलहाल यही कीजिए, क्योंकि अभी आपके सॉन्ग आने में बहुत समय बाकी है। राधा कृष्ण गोपी जी लिखते हैं कि न दिन का पता न रात का, एक जवाब दे खुदा मेरी बात का, और कितने दिन हो गए उससे बिछड़े हुए हैं, और बता वो कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। वाह वाह वाह, क्या बात है। मीना कुमारी जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, और हरीश सिंह जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही उम्दा पसंद है, सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, मजा आ गया सुन के। और संजय सहनी जी लिखते हैं कि गा तो मैं भी सकता हूँ पर वो आवाज नहीं, गा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन वो आवाज नहीं, और बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन वो साज नहीं। ऐ ताजमहल बनाने वाले, ऐ ताजमहल बनाने वाले, तू इतना गुरूर ना कर, अरे बना तो मैं भी सकता हूँ पर वो मुमताज नहीं, वो मुमताज नहीं। जी सही कहा आपने। वैसे गजानन जी लिखते हैं कि शाहिद जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है। अगला जो डिमांड है मेरे पास है वो मैं सुनाऊंगा आमना खान जी का। आमना खान जी का मतलब शेर व शायरी के साथ एक गाना है, उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आने वाला है। इंजॉय द ट्रैक।
2: हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो,
1: आहा।
2: उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं।
1: ओहो।
2: मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो,
1: ओहो वाह,
2: बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर
1: देर कह
2: देता
1: देता
2: हूं मैं।
1: मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है।
2: बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो,
1: आहा।
2: किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो,
1: आहा, देर कह जाता हूँ मैं।
2: हमेशा देर
1: देर
2: कर
1: कह जाता
2: देता
1: हूँ,
2: हूं मैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फितरत है।
2: किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो,
1: हमेशा
2: हकीकत और थी कुछ
1: आहा,
2: उसको जाके ये बताना हो,
1: हमेशा
2: हमेशा
1: देर कह जाता हूँ मैं।
2: देर कर देगा।
1: हमेशा देर कह जाता हूँ, क्या करूँ, हाय रे मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा प्यारा गाना प्ले हो रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाहिद जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और विनर बनाने के लिए और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और एनपी कुराई लिखते हैं कि अमन सर जी हर 10-15 दिन के बाद एक ना ना भाई एक ये को बहुत है। राघिर खान जी लिखते हैं कि ओके ठीक है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बेहतरीन लाजवाब। थैंक यू सो मच उनको इस गाने के लिए। और मैं आमना खान जी को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा और उनको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मेरे ऊपर एक मतलब शायरी भेजा है कि मैं मुझसे देर हो जाती है, बिल्कुल मैं देर करता नहीं। और इसके लिए उनको स्पेशल एक वो मतलब स्पेशल वो एक गाना और वो सुन सकती हैं, उनके लिए स्पेशल रहेगा हमारी तरफ से ओके। और अरशद जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम फुल वॉल्यूम के साथ में सुन रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओके और यहाँ पे लिखते हैं आमना जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो प्ले करने वाला हूँ किनका जरा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओके अगला जो गाना है वो हमारे साहनी जी का है। और साहनी जी कौन है? यानी कि संजय साहनी जी। और सुनना चाहते हैं मुझे जीने नहीं देती है याद।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटेस्ट, राजू दीवाना बना दे। और यहाँ पे इन पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि यानी कि तुमसे बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये हमसे मत पूछो। लिखते हैं कि तुमसे बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये हमसे मत पूछो। हम हर रोज मुस्कुराते हैं और हर रात टूट जाते हैं, और तुम्हें खोने का डर इतना गहरा है कि इस दिल में कि तुम्हारे साथ रहते हुए भी जुदाई का डर सताता है, और तुम चले गए तो शायद सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस मेरा दिल इन पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि हर वक्त हर दर्द भर देता है, मगर कुछ लोग तो इतने खास होते हैं कि उनके जाने के बाद भी वक्त भी बेबस हो जाता है, और तुझसे दूर होकर जीना पड़ा तो जी लेंगे। और सच कहूँ हर सांस में तुम्हें याद करेंगे और हर धड़कन से तुम्हें पुकारेंगे कि मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। वाह क्या बात है, ये फिर देख सुनते हैं।
1: अमन जी सॉन्ग तो अच्छे ही हैं, सैड सॉन्ग अच्छे ही हैं, बट आप इसमें कुछ अदर सॉन्ग भी मिक्स करिए, बिकॉज सारे सैड सॉन्ग होने के कारण सब धीरे धीरे धीरे धीरे चैट बॉक्स में भी सब कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनको अब मिक्स कर दीजिए, कभी सैड सॉन्ग कभी हैप्पी सॉन्ग। अच्छा। तो इस तरीके से प्रोग्राम शायद बहुत अच्छा चलेगा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको। अच्छा। बाकी आपकी
0: ओके, थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे अपने तरीके से प्रोग्राम करने दीजिए प्लीज़। और यहाँ पे जाकिर खान जी लिखते हैं कि सर जी आज के प्रोग्राम का नाम होना चाहिए 90s एंड सैड स्पेशल। गजानंद जी लिखते हैं कि मुझे जीने नहीं देती है यात्री, बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मुझे जीने नहीं देती है यात्री, बहुत ही ये प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और आर्य सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगला जो गाना है आमरा खान जी ने भेज दिया है, तो चलिए इसी गाने के बाद मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और विष्णु चंद्र जी ने लिखते हैं कि मितवा भूल न जाना, बहुत ही सुंदर है ये गाना। ओके, और गजानंद जी लिखते हैं कि मितवा भूल न जाना मोहम्मद अजीज की आवाज में बहुत ही बेहतरीन गाना, सच में मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम सुपर से ऊपर चल रहा है, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू सो मच आपका भी। और अमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आर्य सिंह जी लिखते हैं कि फिल्म यानी कब तक चुप रहूंगी का ये गाना बहुत ही शानदार है, और सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आमना खान जी। ओके, और जागीर खान जी लिखते हैं कि मितवा भूल ना जाना हर टचिंग सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग में से एक है। ओ, ये ऐसा है क्या। जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। आरजे रत्ना जी लिखते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा, और इस गाने को लेकिन शायद ये मतलब ओल्ड वर्जन में है मेरे ख्याल से, ये क्या, मैं कोशिश करूंगा इस गाने के लिए, फिलहाल तो मैं अभी इन प्रॉमिस नहीं कर सकता। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासित जी लिखते हैं कि मितवा भूल ना जाना आमना खान जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि सच में बहुत अच्छा ये गाना लगा है और मजा आ गया सुन के। क्या नाम है, पिकू राय जी लिखते हैं कि मितवा भूल ना जाना एक नंबर गाना लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। अगला जो डिमांड है ज्योति खटवड़ जी का सुनवा रहा हूं मैं, इंजॉय कीजिए इस गाने के लिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हैं और मीना जी लिखते हैं कि हमारा गाना बिल्कुल कोशिश करेंगे लेकिन प्रॉमिस तो करने वाले आज है नहीं। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि आदरणीय ज्योति खटवरी जी के पसंद लाजवाब बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और जितेंद्र जी लिखते हैं शानदार पसंद है जी बिल्कुल। और दिल जुड़ चुके हैं हमसे मिस्टर दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका दिलीप कुमार जी आपका। और बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं ज्योति खटवर जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तेरी याद मुझे बहुत आने लगी है, गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और अर्षद जी लिखते हैं कि अमन सर जी तेरी याद जब भी आने लगती है खामोशी में भी गुनगुनाने लगती है और दूर सही तुम नजरों से मेरी पर हर सांस तेरी मौजूदगी जताने लगती है, वेरी गुड सॉन्ग अच्छा ओके। और ये फीडबैक सुनते हैं
1: आरजे अमन खास जी।
0: जी जी
1: आज के प्रोग्राम का रंग और रूप बिल्कुल अलग सा लग रहा है सर। और यह बदलाव हमें भी बहुत अच्छा लगा,
0: थैंक यू सो मच।
1: शुक्रिया सभी भाइयों का, सॉन्ग भी बहुत अच्छे आने लगे हैं।
0: ओके। इसी बात का अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी प्रमोद कुमार जी का, ये सुनना चाहते हैं इश्क न करना, बिल्कुल इश्क न करना भाई।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं और शामिल करता हूँ मैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है इस गाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल पे चलाई छुड़िया भी गाना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपको ये गाना भी पसंद आया। और लिखते हैं यहाँ पे मीना जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अमन जी, मैं भी जुड़ गई। जी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका मीना इब्राहिम जी। और अरशद जी लिखते हैं कि दिल लगाने से पहले सोच लेना, यहाँ मुस्कुराहटों की कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है। और कहते तो सब है कि इश्क न करना, और यानी कि पर इस दिल को यानी कहाँ समझ वो किसी की आती है। गाना बहुत ही अच्छा लगा है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इश्क न करना। और आत्माराम जी लिखते हैं कि रेडियो साथी हमारे यानी प्रमोद जी के पसंद बहुत अच्छी लगी, आप प्रतिम लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि वह क्या लाजवाब है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पिकू राय जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके और यहाँ पे लिखते हैं यानी काजल झका जी, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और रेनबो लवर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन बाबू, गुड इवनिंग। और इश्क न करना गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और दिल पे चलाई छुड़िया भी गाना बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
2: क्या बात है, क्या बात है, आज तो आप महफिल में जो समा बांध दिया है आपने, ऐसा लग रहा है रेडियो से निकल के सीधा आपके स्टूडियो में बैठ जाना।
1: अच्छा, आइए आइए आइए, वेलकम है आपका बिल्कुल। और यहाँ पे इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।
3: हेलो अमन जी, आपने तो ये सॉन्ग इसी तरीके से गाया है जैसे कि आपके ही दिल पे कई लोगों ने छुरियां चलाई हैं। इतने दिल से कौन सॉन्ग गाता है, समझ ही नहीं आ रहा था कि असली सिंगर कौन है। अच्छा। वो कि आप, क्योंकि उसकी आवाज तो दब गई थी, बट आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी और आपने इस सॉन्ग को बहुत ज्यादा दिल से गाया है।
1: अच्छा।
3: तो ये सॉन्ग सुनाने के लिए शुक्रिया।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि सोनू निगम की आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अगम कुमार वाला गाना और दिल पे चलाई छुड़िया, दोनों गाने बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो यानी कि प्रीति रायदास जी का है, सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आते हैं। ऑफिकुर जी लिखते हैं कि ये यानी प्रीति रायदास जी का गाना बहुत ही पसंद आया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको इससे इतने प्यारे गाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि ओके और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू यानी प्रीति जी आपका। फूल भक्त जी लिखते हैं कि अरे वो गाने का जवाब था, वो किसी की डिमांड नहीं थी। और ये फीडबैक
1: अमन जी, ये तेरे नाम का सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, बट इसी मूवी का एक सॉन्ग है जो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे यानी प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, देर से ही सही लेकिन प्ले हो गया। हाँ क्या करें, हर गाने को यानी कि मतलब उसके सिचुएशन पर और कहाँ वो कौन सा गाना फिट होता है वहाँ पे प्ले करना पड़ता है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि ये तेरे नाम मूवी का गाना बहुत ही प्यारा लगा है, सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी को। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है। और ये फीडबैक सुनते हैं,
2: प्रीति रायदास जी का गाना बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा, कुछ न कुछ तो मिलती ही है ना, हंसी के बदले गम मिलता है, बहाई के बदले पतझर मिलती है, प्यार के बदले बेवफाई मिलती है, कुछ न कुछ तो मिलती है ना। वैसे बहुत ही अच्छा गाना आपका, थैंक यू प्रीति रायदास जी।
1: ओके जी। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती है। और अमीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत गाना है जी, बिल्कुल। और जाकिर जी लिखते हैं कि सारे सैड सॉन्ग्स बहुत ही पसंद आ रहे हैं, आज का प्रोग्राम लाजवाब चल रहा है। ओ थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया। अगला डिमांड सुनते हैं काजल झका जी का ही, सुनते हैं क्या कहती हैं और क्या सुनवा रही हैं।
3: नमस्ते, गुड इवनिंग, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए। सॉन्ग है मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, मुझसे जो दूर है ये उससे मिला देती है, याद क्या चीज है आती है रुला देती है, याद क्या चीज है आती है रुला देती है। और ये सॉन्ग मैं सुना दूंगी मिठू मियाँ जी को, और जितने दोस्त सुन रहे हैं सभी को सुना दूंगी।

0: बिल्कुल याद, क्या चीज है, आती है रुला देती है। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे मेरे पास आ चुके हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रीति रायदास जी का गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी कि प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि आज के यानी कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गाने को पसंद करने का फीडबैक देने के लिए। और इन विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही खूबसूरत है काजल झका जी का। और पप्पीपुरा लिखते हैं कि आज एक एक दोस्त का पसंद का सॉन्ग बहुत ही लाजवाब लाजवाब लाजवाब हो रहा है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि जी आएगा आएगा, टेंशन मत लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अर्शद जी लिखते हैं कि याद क्या चीज़ आती है रुला देती है और सोए हुए दर्द को फिर से जगा देती है। हम तो भूलना चाहते हैं उन गुजरे लम्हों को, पर ये यादें बनकर दस्तक दिए आंखें भिगो देती है। वेरी नाइस सॉन्ग है कह रहे हैं। और नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे यार। आमना खान जी लिखते कि ये काजल जी के पसंद बहुत ही लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद है तुमको। और जाकिर जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छी पसंद है काजल झका जी, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि काजल जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और फीडबैक सुनते हैं खुले वक्त संजू भाव की।
1: अमन सर जी, मेरी छोटी और प्यारी बहन काजल झका जी, इनके फरमाइश का गीत दिल को छू गया, उनको मैं दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और आज का कार्यक्रम जो शॉर्ट सॉन्ग स्पेशल चल रहा है सर, एकदम लल्लन टॉप रेडबुल और एनर्जेटिक हो रहा है सर, सभी दोस्तों की फरमाइश से एक से बढ़कर एक। और मैं यही बोलना चाहूँगा, आप अपने तरीके से कार्यक्रम साझा कीजिए। और यही बोलना चाहूँगा, हफ्ते में एक बार सैड सॉन्ग स्पेशल रखिए सर, मज़ा आएगा, सच में मज़ा आ रहा है। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, अमन जी के साथ धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और अगला डिमांड आप ही लोग का आता है, आप ही का पूरा ग्रुप का आ रहा है। और अकबर खान जी लिखते हैं कि याद क्या चीज़ है, आती है रुला देती है, यानी कि काजल जी का गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि काजल जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा यानी फूले भक्त संजू भाव जी का, और हमारे यानी कि मिसाल अंगद जी का, और यानी कि गजानन जी का जो पूरा ग्रुप है उस ग्रुप में ये सभी शामिल हो रहे हैं। आते आते आते तेरी याद आ गई। एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम वेलकम रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते बहुत सारे दोस्तों के फीडबैक आए हुए मेरे पास राहुल पासी चिल्ली देंगे अमन सर जी ये काजल जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है छक्कास लगा है और ओके और यहाँ पे प्रियंका जी लिखने के बहुत ही प्यारा गाना है ओके जी और गजानंद जी लिखने के आदरणीय अमन जी को प्यारा नमस्कार है हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और मीना जी लिखने के ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है ये मेरा फेवरेट गाना में से है क्या और ये फीडबैक
1: गजानंद ग्रुप संजू बाबू जी और मिशा लंगत जी तीनों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही लाजवाब सुनवाने के लिए शुक्रिया और अमन सर जी आपने प्ले करके हमें सुनवाया आपका भी तहे दिल से शुक्रिया मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आर जे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी और फूले बसंत जी का क्या कर
2: अमन सर जी आपको दिल से लाखों लाखों धन्यवाद आपने हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी थैंक यू सो मच सर आपने हमारा गीत चलाया हमारे गीत को चार चंद लग गए साथ में आपने गुनगुनाया और सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा फीडबैक के माध्यम से हम पर अपना प्यार बरसाया मैं फुले भक्त संजू भाऊ रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे

0: बहुत थैंक यू, सभी दोस्त को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फीडबैक देने के लिए। अमन सर जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा गाना बजा देने के लिए। थैंक यू, मैं काजल सीतामढ़ी से।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि अच्छा ठीक है, जरूर अगर इन्हें प्ले होना होगा तो प्ले हो जाएगा। जितेंद्र जी लिखते हैं कि हमारे गजानंद जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि आते आते तेरी याद आ गई, गाना बहुत ही शानदार लगा है। अगला जो डिमांड है अकबर खान जी का है, अकबर खान जी सुनना माना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

0: मेरे पास तुम हो, तुम हो, तुम हो, और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास। पहला तो आत्माराम पाटिल जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर जी
0: बोलिए।
1: गजानन महु साधुकार और संजू बाबू फुले भक्त बोधवड और साथी, इनकी फरमाइश बहुत ही नाइस, हमें अच्छा लगा सर। शुक्रिया याद के लिए। आत्माराम पाटिल, निया बुलडाना, महाराष्ट्र से।
0: ओके जी, और यहाँ पे बागेश्वर निशा जी लिखते हैं, और सैड सॉन्ग आर वेरी नाइस। और यहाँ पे इन विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ रहा है सुन के। राधाकृष्ण को भी लिखते हैं कि इस शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और फूले भक्त अनुभव क्या कहते हैं?
2: रेडियो के सभी के जाने माने और हमारे परम मित्र आरिफ सिंधी जी, आपको आपके जन्मदिवस की हमारे पूरे फूले परिवार की ओर से और रेडियो हॉट स्टार परिवार की ओर से ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आने वाला हर दिन आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं ढेर सारा धन लेकर आए। परम पिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, वो आपके दामन में इतनी खुशियाँ भरे कि आपका दामन छोटा पड़ जाए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आरिफ सिंधी जी। मैं फूले भक्त संजू भाऊ और अमन सर जी, कुछ देर पहले मेरी छोटी और प्यारी बहन काजल झक्का जी, इनका फीडबैक सुना सर। पता ना सर, मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा कि मेरी छोटी और प्यारी बहन का जो फीडबैक जिन्होंने दिया, तो उनका आवाज़ में उनका दिल भर आया था। पता मुझे ऐसा लगता कि वो रो रहे थे, तो प्लीज़ आप रोइए मत, हम आपके साथ हैं। और अमन सर जी, आपका शुक्रिया, आपने हमारा गीत चलाया, रेडियो टच स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं, वाह क्या गाना है, बहुत ही प्यारा गाना लगा, मुझे मजा आ गया सुन के। जागृत जी लिखते हैं कि ये टूटे हुए इन प्याले में जाम नहीं आता है, और इश्क में मरीज को आराम नहीं आता है। ऐ बेफा दिल तोड़ने से पहले सोच लिया करो कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता है। हाय क्या कह दिया भाई अपने। प्रमोद जी लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड दोस्त गजानन सुलकार जी के पूरा ग्रुप और संजू भाव जी के सभी की डिमांड बहुत ही शानदार है, सभी को धन्यवाद। अकबर खान जी को भी धन्यवाद। और अकबर खान जी लिखते हैं, अमन जी ये गाना मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में इन पहली बार नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में गाया गया, रफ़ी साहब के लिए बनाया गया था, लेकिन रफ़ी साहब के जाने के बाद ये गाना मोहम्मद अजीज साहब से गाने के लिए बिल्कुल इंसाफ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल अगला जो डिमांड है, अच्छा यानी कि पूजा भास्कर लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, अगला जो डिमांड है वो इन विजय कुमार जी का है, और सुनना चाहते हैं जरूरी था, बिल्कुल इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं। और आमना खान जी जीतेंगे, वाह क्या फरमाइश है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह क्या खूबसूरत नगमा है, सच में दिल खुश करती है। अरे जी लिखते हैं कि भाई संजू भाव जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए, और भी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय आत्माराम पाड़ी जी और फूल बाग संजू भाव के फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और फूल बाग संजू भाव फीडबैक क्या कहते हैं,
1: अमन सर जी, मेरी बहन पूजा भास्कर जी और उनके बाद विजय कुमार जी, इन दोनों की आपने जो बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया और छा गए सच में। इतना अच्छा दोनों का गीत था सर, बैक टू बैक सुनने को मिला, दिल को छू गया सर। और आज आप बहुत ही अनोखे अंदाज में आपका कार्यक्रम सजा कर रहे हो सर, उसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। और हमारे आत्माराम पाटिल जी और प्रमोद कुमार जी, इन दोनों को स्पेशल धन्यवाद, इन दोनों को हमारा फीडबैक और हमारा गीत पसंद आया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जाकिर जी लिखते हैं कि तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, लिखते हैं कि तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभा पाएंगे हम, और मिटा देंगे खुद को जहाँ से भी, लेकिन मिटा देंगे खुद को जहाँ से भी, लेकिन तेरा नाम दिल से ना मिटा पाएंगे हम। और यहाँ पे यानी कि विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अर्षद जी लिखते हैं कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, दिल के इस तूफान में घाट ठहरना भी ज़रूरी था, हम तो संभल ही जाते तेरी मोहब्बत के सहारे, पर इस टूटे दिल का बिखरना भी ज़रूरी था, बहुत ही अच्छा गाना लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि तेरी आंखों का दरिया में उतरना जरूरी था, गाना बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो यानी प्रियंका जी का, प्रियंका जी सुनना चाहती हैं सैयारा का वो प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। और ओके थैंक यू सो मच आपका भी आमना खान जी आपका और यहाँ पे गाइजन यानी प्रियंका जी की डिमांड बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए और बहुत लिखते हैं कि डियर फ्रेंड हमें संजू भाव जी का फीडबैक बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह सभी गाने बहुत खूबसूरत लाजवाब हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। और आत्माराम जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर जी
0: जी
1: बेस्ट रिपोर्टर संजू भाव जी का फीडबैक बहुत ही अप्रतिम, शुक्रिया उनको। मैं आत्माराम पटेल। ओके
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे एनपी कुरा जी लिखते हैं कि सियारा का गाना बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि इन प्रियंका जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं उनको। जाकिर जी लिखते हैं कि ये सुपर चॉइस है प्रियंका जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और ये फीडबैक क्या कहते हैं?
2: अमन सर जी, प्रियंका जी इनका गीत सुन के हम फ्लैशबैक में चले गए सर।
0: अच्छा,
2: इनका गीत सुन के हमें पुरानी याद आई, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा गीत सुनवाया और हमें पुरानी याद दिलाई, थैंक यू। मैं फूले बख्ता संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: वेलकम जी, अगला जो डिमांड है यानी कि जाकिर खान जी का है, सुनवाते हैं जाकिर खान जी, एंजॉय कीजिए।

और मैं अभी समय देख रहा हूँ कि ओ माय गॉड, अभी समय हो चुका है 9:32 और अभी हमारे पास एक डिमांड है 38 बाकी है और एक और कुछ मैसेज में भी है, मतलब यानी 40+ डिमांड मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन सभी की डिमांड पूरा करना इम्पॉसिबल है आज तो।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। अर्शद जी लिखते हैं कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, और वही चमक और वही खामोश रात है, बस बदल गए हैं तो वो लोग बदल गए हैं जिनकी हर बात में कभी हमारी बात थी। वेरी गुड सॉन्ग है, अच्छा। और यानी कि यहाँ पे बाबूलाल जान लिखते हैं कि यानी प्रियंका जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है, और गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है, थैंक यू सो मच। उसको नंदलाल जी लिखते हैं जाकिर भाई आपका गाना मुझे बहुत लाजवाब लगा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमें दोस्त ये जाकिर जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है। और भाई गॉड कितना स्लो नेट चल रहा है यार। ओके, और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी बिल्कुल कोशिश करूँगा आपका गाने के लिए। और यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि आजा सनम मेरी जान चली गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि मेरा गाना कब आएगा। लो कर लो बात, गाना कब आएगा, हमें वो कहावत आ रहा है याद कि सारा रामायण बीत गया और शादी किससे हुई तो मालूम ही नहीं चला। अरे बाबा गाना बहुत पहले प्ले हो चुका है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आजा सनम मेरी जान चली गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अर्षद जी लिखते हैं कि आजा सनम की अब सांसों की लड़ी टूट रही है और तेरे बिना ये तो हंसती हुई जिंदगी रूठी है। आके थाम ले मुझे इस अंधेरी रात में वरना दिल की हर धड़कन तेरे नाम छूट रही है। लाल अगला जो डिमांड है, अच्छा मतलब पहले फीडबैक।
1: थैंक यू सो मच सर मेरा गाना प्ले करने के लिए और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सभी दोस्तों के सैड सॉन्ग दिल को छू गए जिन्हें सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सर जी। मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, और यहाँ अगला जो डिमांड है मीना जी की है, ये सुनना चाहती हैं अच्छा सिरा दिया तूने मेरे प्यार का। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे गजन अंजलि मिलते हैं। मीना जी, मीना जी के पसंद मुझे बहुत अच्छे हैं, मतलब ये मीना कुमारी जी थे और राधा कृष्ण गोपी जी का बहुत ही शानदार डिमांड है। धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरा प्यार का गाना, बहुत ही प्यार लगा है। और ये प्रियंका जी लिखते हैं कि ये जो गाना है ना, और वो 1988 का है, वो नहीं प्ले हो सकता है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे ये
1: अमन सर जी
0: बोलिए,
1: हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारी फरमाइश बजे या न बजे, लेकिन हम प्रोग्राम आखिर तक सुनते रहेंगे।
0: धन्यवाद,
1: इसी में भी हम खुशी मानते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: मैं आत्माराम पाटिल।
0: आज चूंकि आपका गाना थोड़ा सा कुछ अलग आ चुका है, इसी थीम पर नहीं हो रहा, इसलिए मैं नहीं प्ले कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। मीना जी लिखते हैं लाजवाब ये नहीं पसंद है, और मीना कुमारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आमना खान जी लिखते हैं वंडरफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम के लिए। और उनके बाद इन बाबूलाल जी लिखते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाना, बहुत ही प्यार लगा है। और अर्षद जी लिखते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बहुत ही प्यारा गाना। अगला जो डिमांड है रवि मोहड़े जी का है, सुनना चाहते हैं लाइव बिना गई निभाई बिना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर रवि मार्जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और यानी कि इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है, इस गाने के लिए धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो इन पीकू राय जी का है, पीकू राय जी सुनना चाहते हैं भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि भाई पीकू राय जी के पसंद बहुत ही ऑसम डिमांड लगी, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। नंदलाल जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई पीकू राय जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगला जो डिमांड है वो है हमारे राधे जी का, ये सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। ए दिल ये मुश्किल, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और जाकर कहते हैं कि भुला ना सको ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद जी जीते हैं, बहुत ही शानदार डिमांड है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे इनका यानी कि हमारे शाहिद अंसारी जो आज इन विनर बने हुए थे उनके गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ पहले, तो इंजॉय कीजिए।

ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि यहाँ पे चार दोस्तों का है, अशोक देशमुख जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं और सुनील कोंडे जी। इन सभी की एक ही डिमांड है, याद याद याद, बस याद रह जाती है। तो आज आपके मैं ऑडियो शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं सीधे गाना प्ले करता हूँ क्योंकि गाना बहुत लंबा है। तो आप सभी के दोस्तों की डिमांड पर ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले तो राधा कृष्ण गोपी जी लिखते हैं कि ये चांद की चांदनी लिखते हैं कि चांद की चांदनी उतारों के बरात और प्यारे सी मुस्कान और मीठी सी रात और सपनों में खो जाए दिल जो मुस्कुराओ और शुभ राशि कैसे चेहरा इतना जल्दी। ओके जी, ये फीडबैक
1: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और एक भाई भी है
0: सुनील कोंडे जी,
1: सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही शानदार, सुनवाने के लिए शुक्रिया। और अमन सर जी, आपने प्ले करके हमें सुनवाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे आमना जी लिखते हैं, सच में आर जमन जी आपको दिल के गहराई से शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और सुनील कोंडे जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद जी लिखते हैं, वाह क्या गाना है, दिल खुश करने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आत्मा अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं,
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे सुनील कोंडे जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। जाकिर जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद लाजवाब लगी है, बहुत मस्त लगी है, थैंक यू सो मच। अर्शद जी लिखते हैं कि इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है मगर यादों के निशान कभी मिटते नहीं है। जमीन लिखते हैं कि जमाने भर को जला देती है ये आग, लेकिन इस आग में जलने वाले कभी बुझते नहीं। लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। संगीता मुरकर जी जुड़ चुकी हैं, लिखते हैं कि है सर, मैं गाने सुन रही हूँ, सभी गाने एक नंबर प्ले हो रहे हैं और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो, पहले उनका ख्याल रखिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए। मैं लेट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं थोड़े काम से बस गाना इंड हुआ और मैं थोड़ा बाहर चले गया था।
0: कोई बात नहीं,
3: बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया सभी दोस्तों का भी हमारे गाने को पसंद करने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल, मध्य प्रदेश।
0: फिलहाल अगला जो डिमांड है वो बाबूलाल अंजाना जी का है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए बाबूलाल अंजाना जी इस गाने को।

वेलकम बैक टू रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं दोस्त बाबूलाल अंजानंद जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं बाबूलाल जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। आरिफ सिंह जी लिखते हैं बाबूलाल अंजानंद जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे MD फैज आलम जी का है। MD फैज आलम जी, इंजॉय कीजिए। हाँ।

0: फिलहाल मेरे पास आ चुके हैं जागृत जी नितिन जी। सर जी स्टॉल तो बहुत ही अच्छा लगा, ओके जी। और ये
1: आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय आत्मराम पाटिल जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी और सुनील कोंडे जी, इन चारों दोस्तों की आपने मिलजुल फरमाई चलाई सर। इन चारों का गीत आज के कार्यक्रम में एकदम सुपर रहा और सुपर से ऊपर रहा। मैं चारों दोस्तों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमें अपने गीत में याद करने के लिए और इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और उनके गीत के बाद में आपने बाबूलाल अंजाना जी, इनकी आपने फरमाई चलाई सर, तो उनका गीत भी सर हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी जो फरमाई चल रही है हमारे MD फैज़ आलम जी, इनका गीत भी सर आज सुपर रहा। और आज का कार्यक्रम भी जो अब तक आपने सजाया सर, काबिले तारीफ और लल्लन टॉप रहा। सच में सर हर हमेशा मतलब के हर संडे या फिर हफ्ते में एक बार आप सैड सॉन्ग स्पेशल लिया कीजिए सर, मज़ा आ जाता है सर। मैं भोले भक्त संजू भाऊ, सभी को धन्यवाद धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी, और यानी कि प्रमोद कुमार जी MD फैज़ जी के पसंद बहुत आसान लगे, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और मुझे यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि बेफाई और प्यार के गाने सुनकर एक ही बात बोलूँगा कि बेफा तो सनम होती है या आशिक होता है, खुदा तो परिवार वाले होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं। अच्छा ये बात है। अगला जो डिमांड है हमारे नंद लाल जी के बाद है, उनके बाद है सरोजित शेट्टी जी, उनके बाद एक मेरी पसंद का डिमांड होगा आप सबके लिए। फिलहाल नंद लाल जी का गाना

समय को रेडियो हॉट हिटा जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त नंद लाल जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। नंद लाल जी लिखते हैं सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है आपका भी। और आदित्य सिंह जी लिखते हैं सरवजीत सर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। तो अगला जो डिमांड है, मैं प्ले अपनी पसंद का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और इसके बाद से आप लोग को धूम धड़ाका में छोड़ के जाऊंगा संदीप सुतार जी के पसंद। लेकिन फिलहाल मेरी डिमांड को एंजॉय कीजिए। मैंने बहुत से दोस्तों के गाने को रिजेक्ट किया है, ये गाना सब उन सबको लिए है जिनका गाना आज मैंने शामिल नहीं किया, नहीं प्ले किया है, सॉरी सभी के लिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक में पसा चुके हैं और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग चल रहा है, आमना खान जी लिखते हैं सुपर चॉइस है आपकी, थैंक यू सो मच, और यानी कि हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आपकी भी पसंद सुपर हिट लगी है, मजा आ गया सुन के। और ये
1: अमन सर जी आपकी पसंद बहुत ही लाजवाब, सुनवाने के लिए शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉटस्टार आरजे अमन सर जी के साथ, आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा, शुक्रिया।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यानी बागेश्वर निशा जी लेते हैं कि ये मेरा फेवरेट गाना लगा है और मतलब मूवी भी बहुत अच्छी है। गजानन जी लिखते हैं कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार, जैसे गाना बहुत ही प्यारा लगा। अब सब कुछ चूंकि आप लोग बहुत ही उस समय से सैड सैड थे, अब बिल्कुल यहाँ पे जो अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें आप लोग झूमिए और मस्ती कीजिए, और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त। और ये पसंद है हमारे संदीप सुतार जी का, तो संदीप सुतार जी इंजॉय कीजिए गाने को और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना मदद तक लिए। मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: जरा ठहरो

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे, हम हाथ न छोड़ेंगे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।